0: नारायण भगवान की
1: जय।
0: अलकपुरी जी महादेव की
1: जय।
0: देवपुरी श्री महादेव
1: जय।
0: माधव कृष्ण भगवान
1: जय।
0: ओम शांति शांति।
2: जय।

तस्मै शिखराय नमः शिवाय। ॐ मनरिति भस्म जलमिति भस्म है मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य सूर्याय दक्षा धरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय। आगे शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य सूर्याय दक्षा धरनाशकाय कंठ में भी कर दो गले में हिया शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य सूर्याय मेष धरनाशकाय हरिः ओम पिनाकहस्ताय सूर्याय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय ओम यक्षस्वरूपाय जटाधरकाय पिनाकहस्ताय सनातनाय ओम दिवाय देवाय दिगंबराय तस्मै हकराय नमः शिवाय। ओम जलमिति भस्म अग्निरिति भस्मः हरि ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वा वस्तम गतो विवा अदसाय यस्मृत पुनरीकाक्षम स्वबाह्याभ्यन्तरः शुचिः यस्मृत पुनरीकाक्षम स्वबाह्याभ्यन्तरः शुचिः ज्यादा हो गए Put some way at this. That's all right. तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय विद्महे तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम भस्मांगराय नीलकंठाय महेश्वराय सदाशिवाय सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय गुड गुड पिनाकहस्ताय जटाधराय गुड ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुविजिताय ए प्राण प्रतिष्ठन्तु असे प्राण क्षरन्तु च असे देवत्व मर्चाय माम हेतु च कश्चनः। हरिः ओम गंगे चैमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी स्नातम प्रतिगृह्यताम ओम जलस्नानम करिष्यामि श्रीगंगा।

ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नवनीत समुत्पन्नम सर्वसंतोषकारकम पावन यज्ञ हेतुश्च पयस्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम इति पंचामृतमयानीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। शर्करया स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। हरिः ओम। ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। हरिः ओम। कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं पयस्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। पावन यज्ञ हेतुश्च पयस्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। ओम सदा शिवाय नमः। साम सदा शिवाय नमः। एवरी टाइम कीप चैंटिंग ओम नमः शिवाय व्हाइल यू डूइंग वॉशिंग। हरि ओम सदा शिवाय नमो नमः। साम सदा शिवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम तरु पुष्परेतु समुद्भूतं सुस्वादं मधुरं मधु तेजो पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। इदं मधु स्नानं करिष्यामि। शिवलिंगाय नमो नमः। हरिः ओम। ओम पयस्वस्तु समुद्भूतं मधुराम्ल शशिप्रभं दद्यानीतमयानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। ओदो सदाशिवाय नमः। ओम सदाशिवाय नमः। साम्ब सदाशिवाय नमः। हरि ओम। पञ्चामृतमयानीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। पञ्चामृतमयानीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। हरिः ओम। पञ्चामृतमयानीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। ओम हर हर महादेव। नाउ वाटर। ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। काशी भागीरथी सर्वतीर्थाथी जलं सन्निध्यौ कुरु। ओम श्रीनारायण नमः। श्री पशुपते नमः। श्री गंगाधराय नमः। जटाधराय नमः। ओम अष्टांगलिंगाय नमः। ओम श्री सदाशिवाय नमो नमः। ओम लिंगाष्टकाय नमो नमः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। पानी और हवे तिलक तिलक करना है। भस्म का अच्छे से तिलक करके। हरिः ओम। चंदनं तु महत्पुण्यं पवित्रं भावनासनम् आपदं हरति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। ओम सदा शिवाय नमः। साम्ब सदा

0: वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पूजार्थं प्रतिगृह्यतां नानाः रत्नानि सुगन्धिनि फलानि च मया दत्तानि लेपार्थं पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुगीफलं मया दत्तं नागवल्लीर्दलयुक्तं एलाचूर्णादिसंयुक्तं नागवल्लीर्चूर्णसंयुक्तं समर्पयामि क्वाइंट्स ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसु अनंत पुण्यम फलम दद शांति प्रयक्ष्य मे दक्षिणाम समर्पयामि साम मसला शिवाय नमो नमः वस्त्रम ओम लोकलज्जा निवारणे मया पिपादिते लख्ये वस्त्रम समर्पयामि श्री नारायण साम सदा शिवाय नमः बस अब धतुर की जगह में इसी को हम करें इसको धतुर को स्मरण करके हरि ओम धतुर सहित पुष्पादि समर्पयामि कान्नात कान्नात प्ररोहन्ति एवान दुर्वे प्रतनु सहस्त्रेण सतेन दुर्वाम समर्पयामि त्रिदलम त्रिनेत्रम त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम त्रिजनम ग्यारह टाइम्स अड़ाइए त्रिजन्मम त्रिगुणाकारम सत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्र समार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम सत्रियायुधम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्र समार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम सत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम एवरीवन कैन पुट दिस वेरी गुड टुडे इफ समबडी हरि ही ओम क्या हो गए 11 टाइम्स अच्छा ओम माल्यादिनी सुगंधिनी तिलक लगाइए सारे भगवान को तो पचाए Can you pass that thali to Swamiji?
1: Gajananam bhutaganadi sevitam kapitta jambu phalacharu bhakshanam umasutam soka vinasakarakam namami vigneshwara padapangajam siddhi buddhi saitaya sri gamganadhipataye namaha श्रीखन्नम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम बीलपेनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहताम श्रीगम गणाधिपतये नमो नमः
0: सिंदूर भी लगा दीजिए
1: सिंदूरम शोभनम चैव कामदम प्रतिगृहताम सिंदूरम शोभनम चैव सौभाग्यम सुखवर्धनम सुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम अक्षताश्च कुंकुमाक्ता शुभ्रा घुनाश्च निर्मला मया प्रपादिते देतुभ्यं वासति प्रतिगृहताम
0: थोड़ा सा लाल व्हाइट में लाल बहुत अच्छा एक एक बिंद लगे थी बहुत
1: हरिम सांब सदा शिवाय नमः ओम चंदनं तु महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा हरि ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः
0: समवन कैन प्ले द बेल
1: ओम सांब सदा शिवाय नमः
0: ना अगरबत्ती

0: अच्छा
1: शंकर भगवान
0: जय अगरबत्ती वनस्पति रसद भूतो गंधाढ्यम गंधयुक्तम आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। इसको वन लीफ हियर एंड वाटर। वनस्पति रसद भूतो गंधाढ्यम गंधयुक्तम आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। सम वाटर हरि ओम कर्पूर गौरम कर
1: वाटर।
0: ओम ज्योतिर ज्योतिर अग्निर ज्योति स्वाहा। ओम ज्योतिर सूर्य वर्चर सूर्य स्वाहा। ओम अग्निर ज्योतिर वर्चर ज्योति स्वाहा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्घिमन गुरुवेदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरि ओम। ओम श्री परमेश्वराय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम श्री सदा शिवाय नमः।
1: Hey, go back out. Thank you.

0: Ford Walker.
1: ओम प्राच्यै नमः सिंदूर विडालिय. ओम पश्चिमाय नमः. ओम उत्तराय नमः. उत्तर दिशै नमः. ओम दक्षिणाय नमः. ओम ईशानाय नमः. ओम आग्नेय नमः. ओम वायव्ये नमः. ओम नैऋत्ये नमः. शानाय नमः. ओम भूतलाय नमः. नीचे ओम आकाशाय नमः. आकाश में बस अब फूल रख देंगे चारों दिशा में. नाउ फ्लावर वी नीड टू हैव फ्लावर.
0: ब्रिंग इन 9 कलर्स फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन.
1: या दैट इज ऑलरेडी. हरि ओम. ओम सूर्याय नमः. ओम सोम सेता वाइट. ओम चंद्राय नमः. ओम भौमाय लाल रेड. ओम भौमाय नमः. भौमरेण ऑलराइट. भौमाय नमः. नाउ ग्रीन. बुम बुदाय नमः. ओम बुम बुदाय नमः. ओ येलो. ओ ब्रिम बृहस्पतये नमः. नाउ व्हाइट डायमंड कलर. ओम राम ब्रिम रौ शुक्राय नमः. नाउ ब्लैक सनी कलर. ओम शमशनेश्वराय नमः. शमशनेश्वराय नमः. नाउ ब्लू. ओ ये या ओम राम राहवे नमः. ब्राउन. Oh, maybe the one like pinky style. Yeah, you got it? Okay. Yeah.
0: Where is the Vokai? Where is the
1: Basma? There is a small Katori. Where is that Basma? Bas. Om Kim Kedave Namaha. Bas. Bas. Ab Agni ko प्रज्वलित करके एक लकड़ी में रख के छोड़ देंगे उसमें. ओम चंद्रमा मनसो जात दक्षिर सूर्य अजायत श्रोता द्वायु ब्राण समघ्रार अग्नि अजायत. ओम अग्ने सानिल्य गोत्र. ओम अग्ने सानिल्य गोत्र मेष ध्वज प्रामुखे मम सम्मुखो भवः. हरि ओम चंद्रमा मनसो जात तक्षुर सूर्य अजायत श्रोता द्वायु प्राणस मुखारद अग्नि अजायत. बोलिए अग्नि देवता की जय. नाउ वी कैन सेट थ्री लकड़ी विथ घी. थ्री स्टिक्स. थ्री ओनली फर्स्ट थ्री. No. Different, separate. Yeah. Okay. Om Prajapataye Swaha. Om Agnaye Swaha. Good. Om Dhanantarave Swaha. Now, where is that long stick for the ghee? Ghee ke liye. Sure. Om Prajapate Swaha.
0: Now, this take it away.
1: Put it in your chest and when you say Swaha. Okay. जिसको जिसको भस्म लगाना बचा है उनको भी लगा दीजिए, ओ जो पीछे आए।
0: रतन देवी सूरज देवी डोज यू जस्ट केम नाउ पुट देम टिल द गॉड्स फ्रॉम दिस हियर एंड वेयर इज दिस थाली।

ओम गणनांत्वा गणपतिगो हवामय फेणांत्वा प्रेवतिगो हवामय बसुव आहमजानी गर्वदमा त्वमसि गर्वधम स्वाहा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा। हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रप्रचोदयात् स्वाहा। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमः स्वाहा। उमा महेश्वराभ्यं नमः स्वाहा। शची पुरंदराभ्यं नमः स्वाहा। लक्ष्मी नारायणाभ्यं

0: ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, सर्वार्थ देवा सर्वतीर्थादि देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंदकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु नवग्रहादि देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सोधा नमस्तुते स्वाहा, ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा, ओम ब्रह्मपुत्रिये विद्महे सरस्वतीये धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदया स्वाहा, ओम महालक्ष्मीये विद्महे विष्णुपत्नीये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया स्वाहा, ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदया स्वाहा, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुंडकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु स्वाहा, दिवाकराय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदया स्वाहा, ओम दश दिक्पालाय नमः स्वाहा, नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम् नमः, नमः प्रकृते भद्राय देवता देवाय स्मता प्रतिष्ठाम स्वाहा, ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमा नयति कस्सन सशत शोक सुभद्रिकाम काम्बिलवासिनीम स्वाहा, एहे ई ब्रह्मन्द महादेवाय नमः स्वाहा, हरि ओम नीलकंठाय नमः स्वाहा, पशुपत्ये नमः स्वाहा, अघोराय नमः स्वाहा, साम सदाशिवाय नमः स्वाहा, चारवेदाय नमः स्वाहा, ऋग्वेदाय नमः स्वाहा, सामवेदाय नमः स्वाहा, यजुर्वेदाय नमः स्वाहा, अथर्ववेदाय नमः स्वाहा, अठारपुराणाय नमः स्वाहा, सकल उपनिषदाय नमः स्वाहा, बद्रीनाथाय नमः स्वाहा, केदारनाथाय नमः स्वाहा, ठाकुरपुरे नमः स्वाहा, सोमनाथाय नमः स्वाहा, अमरनाथाय नमः स्वाहा, नाउ वी गोइंग थाउजेंड्स
1: थाउजेंड नेम्स ऑफ द शिव,
0: ओम स्थिराय नमः स्वाहा, ओम स्थाणवे नमः स्वाहा, ओम प्रभवे नमः स्वाहा, ओम भीमाय नमः स्वाहा, ओम वरदाय नमः स्वाहा, ओम प्रभवाय नमः स्वाहा, ओम प्रवराय नमः स्वाहा, ओम वरदाय नमः स्वाहा, ओम सर्वात्मने नमः स्वाहा, ओम सर्वविख्याताय नमः, ओम सर्वस्मै नमः स्वाहा, ओम सर्वकराय नमः स्वाहा, ओम भवाय नमः स्वाहा, ओम जटिने नमः स्वाहा, ओम शर्मिणे नमः स्वाहा, ओम शिखंडिने नमः स्वाहा, ओम सर्वांगनाय नमः स्वाहा, ओम सर्वभावनाय नमः स्वाहा, ओम हराय नमः, ओम हरिणाख्याय नमः स्वाहा, ओम सर्वभूतहराय नमः स्वाहा, ओम प्रभवे नमः स्वाहा, ओम प्रवित्याय नमः स्वाहा, ओम निवित्ताय नमः स्वाहा, ओम नियताय नमः स्वाहा, ओम शाश्वताय नमः स्वाहा ओम ध्रुवाय नमः स्वाहा ओम श्मशानवासिने नमः स्वाहा ओम भगवते नमः स्वाहा ओम खजराय नमः स्वाहा ओम गोचराय नमः स्वाहा ओम अर्दनाय नमः स्वाहा अभिवाद्याय नमः स्वाहा महाकर्मणे नमः स्वाहा तपस्विने नमः स्वाहा भूतभावनाय नमः स्वाहा उन्मत्त वेश प्रच्छन्नाय नमः स्वाहा ओम सर्वलोक प्रजापतये नमः स्वाहा ओम महारूपाय नमः स्वाहा महाकायाय नमः स्वाहा ओम वृषरूपाय नमः स्वाहा महायसे नमः स्वाहा महात्मने नमः स्वाहा सर्वभूतात्मने नमः स्वाहा विश्वरूपाय नमः स्वाहा महाहणवे नमः स्वाहा ओम लोकपालाय नमः स्वाहा ओम अंतरहितमने नमः स्वाहा ओम प्रसादाय ओम हरिगर्भे नमः स्वाहा ओम पवित्राय नमः स्वाहा ओम महते नमः स्वाहा ओम नियमाय नमः स्वाहा नियमाश्रिताय नमः स्वाहा ओम सर्वकर्मणे नमः स्वाहा ओम स्वयंभूताय नमः स्वाहा ओम आदये नमः स्वाहा ओम आदिकराय नमः स्वाहा ओम निधये नमः स्वाहा ओम सहस्रथाय नमः स्वाहा विशालाक्षाय नमः ओम सोमाय नमः स्वाहा ओम नक्षत्र साधकाय नमः स्वाहा ओम चंद्राय नमः स्वाहा ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम शनये नमः स्वाहा ओम केतवे नमः स्वाहा ओम ग्रहाय नमः स्वाहा ओम ग्रहपतये नमः स्वाहा ओम वराय नमः स्वाहा ओम अत्रये नमः स्वाहा अत्र नस्मकर्ते नमः स्वाहा ओम मृगबाणपाण्याय नमः स्वाहा ओम अगनाय नमः स्वाहा ओम महातपसे नमः स्वाहा ओम घोर तपसे नमः स्वाहा ओम अदीनाय नमः स्वाहा ओम दीन साधकाय नमः स्वाहा सम्मत सरकाराय नमः स्वाहा ओम मंत्राय नमः स्वाहा ओम प्रमाणाय नमः स्वाहा ओम परमात्म तपसे नमः स्वाहा ओम योगिने नमः स्वाहा ओम यज्ञाय नमः स्वाहा महामीजाय नमः स्वाहा महारेतसे नमः स्वाहा ओम गणपतये नमः स्वाहा दिग्वाससे नमः स्वाहा ओम कामाय नमः स्वाहा मंचवेद नमस्ते नमः स्वाहा परमाय मंत्राय नमः स्वाहा सर्वभावकराय नमः स्वाहा ओम हराय नमः स्वाहा ओम कमंडलुधराय नमः स्वाहा ओम धनुन्ये नमः स्वाहा ओम बाणहस्ताय नमः स्वाहा ओम कपालवते नमः स्वाहा ओम असनये नमः स्वाहा शतघ्रिने नमः स्वाहा ओम खंगिने नमः स्वाहा पट्टिसिने नमः स्वाहा आयुधिने नमः स्वाहा महते नमः स्वाहा सुवस्ताय नमः स्वाहा सुरूपाय नमः स्वाहा ओम तेजसे नमः ओम तेजकराय निधये नमः स्वाहा उष्णीषिणे नमः स्वाहा शुभक्राय नमः स्वाहा उद्ग्राय नमः स्वाहा ओम विनताय नमः स्वाहा ओम दीर्घाय नमः स्वाहा ओम ऋषिकेशाय नमः स्वाहा ओम हरिकेशाय नमः स्वाहा सुतीर्थाय नमः स्वाहा ओम कृष्णाय नमः स्वाहा श्रृंगालरूपाय नमः स्वाहा ओम सिद्धार्थाय नमः ओम मुन्नाय नमः ओम सर्वशुभंकराय नमः स्वाहा ओम अजाय नमः स्वाहा ओम बहुरूपाय नमः स्वाहा ओम गंधधारिणे नमः स्वाहा ओम कर्पूरदिने नमः स्वाहा ऊर्ध्वरेतसे नमः स्वाहा ऊर्ध्वलिंगाय नमः स्वाहा ऊर्ध्वसाये नमः स्वाहा नवस्थलाय नमः स्वाहा त्रिजटिने नमः स्वाहा चिरवाससे नमः स्वाहा ओम रुद्राय नमः ओम सेनापतये नमः ओम विभवे नमः ओम अहस्राय नमः ओम नक्तसुराय नमः स्वाहा ओम तिन्मगये नमः स्वाहा ओम सूचवर्षाय नमः स्वाहा शुभचर्षाय नमः स्वाहा ओम गजग्ने नमः स्वाहा ओम पाणिने नमः स्वाहा। ओम दैत्यग्ने नमः स्वाहा। ओम कालाय नमः स्वाहा। ओम लोकदात्रे नमः स्वाहा। ओम गुणकाराय नमः स्वाहा। सिंहादूल रूपाय नमः स्वाहा। आर्द्रसंभा परावृत्ताय नमः स्वाहा। कालयोगिने नमः स्वाहा। महानादाय नमः स्वाहा। ओम सर्वकामाय नमः स्वाहा। ओम चतुष्पदाय नमः स्वाहा। ओम निशाचराय नमः स्वाहा। ओम प्रेतचारिणी नमः स्वाहा। ओम भूतचारिणी नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम बहुभूताय नमः स्वाहा। ओम बहुधराय नमः स्वाहा। ओम सोनार्वे नमः स्वाहा। ओम अमिताय नमः स्वाहा। ओम गतये नमः स्वाहा। ओम नित्य प्रियाय नमः स्वाहा। नित्य नर्तनाय नमः स्वाहा। नर्तकाय नमः स्वाहा। सर्वलालसाय नमः स्वाहा। ओम घोराय नमः स्वाहा। ओम महातपसे नमः स्वाहा। ओम पासाय नमः स्वाहा। ओम नित्याय नमः स्वाहा। ओम गिरिरुहाय नमः स्वाहा। ओम नवसे नमः स्वाहा। ओम सहस्त्रताय नमः स्वाहा। ओम विजयाय नमः स्वाहा। ओम व्यवसाय नमः स्वाहा। अंतरिद्याय नमः स्वाहा। ओम अतीन्द्राय नमः स्वाहा। अघर्णनाय नमः स्वाहा। ओम घर्षणात्मने नमः स्वाहा। यगने नमः स्वाहा। कामनाशकाय नमः स्वाहा। दक्षगपाहाय नमः स्वाहा। ओम सुसहाय नमः स्वाहा। मध्यमाय नमः स्वाहा। तेजपहारिणे नमः स्वाहा। बलग्ने नमः स्वाहा। मुदिताय नमः स्वाहा। अर्थानाय नमः स्वाहा। अजिताय नमः स्वाहा। अवराय नमः स्वाहा। गंभीरघोषय नमः स्वाहा। गंभीराय नमः स्वाहा। गंभीरबलहानाय नमः स्वाहा। न्यग्नोरूपधराय नमः स्वाहा। न्यग्रुधाराय नमः स्वाहा। ओम वृक्षकर्णस्थिराय नमः स्वाहा। ओम विभवे नमः स्वाहा। सुतीक्ष्णदर्शनाय नमः स्वाहा। महाकायाय नमः स्वाहा। महानयाय नमः स्वाहा। विश्वक्षणाय नमः स्वाहा। ओम हरये नमः स्वाहा। यज्ञाय नमः स्वाहा। संयुगापीडवाहनाय नमः स्वाहा। तीक्ष्णातापाय नमः स्वाहा। ओम हयर्षाय नमः स्वाहा। सहायाय नमः स्वाहा। कर्मकालविदाय नमः स्वाहा। विष्णुप्रसादिताय नमः स्वाहा। यज्ञाय नमः स्वाहा। ओम समुद्राय नमः। ओम बड़मुखाय नमः स्वाहा। उतासनसहासाय नमः स्वाहा। उतासनसहायाय नमः स्वाहा। ओम प्रशान्तन्वे नमः स्वाहा। उतासनाय नमः स्वाहा। उग्रतेजसे नमः स्वाहा। महातेजसे नमः स्वाहा। जन्यायः नमः स्वाहा। बीजकालविदे नमः स्वाहा। ओम ज्योतिषायनाय नमः स्वाहा। ओम सिद्धये नमः स्वाहा। सर्वविग्रहाय नमः स्वाहा। ओम सिखिने नमः स्वाहा। ओम मुनिने नमः स्वाहा। जटिने नमः स्वाहा। जलिने नमः स्वाहा। ओम मूर्तिजाय नमः स्वाहा। मूर्धजाय नमः स्वाहा। ओम बलिने नमः स्वाहा। बैनविने नमः स्वाहा। ओम पणविने नमः स्वाहा। ओम तालिने नमः स्वाहा। ओम खलिने नमः। ओम कलंककटाय नमः स्वाहा। ओम नक्षत्र विग्रह हस्ताय नमः स्वाहा। गुणबुद्धये नमः स्वाहा। ललाय नमः स्वाहा। ओम अगमाय नमः स्वाहा। ओम प्रजापतये नमः स्वाहा। ओम विश्वाहवे नमः स्वाहा। ओम विभागाय नमः स्वाहा। ओम सर्वगाय नमः स्वाहा। अमुखाय नमः स्वाहा। ओम विमोचनाय नमः स्वाहा। सुरासुराय नमः स्वाहा। हिरण्यकवचजताय नमः स्वाहा। मेदजताय नमः स्वाहा। बलचारिण्ये नमः स्वाहा। महीचारिण्ये नमः स्वाहा। ओम श्रुताय नमः स्वाहा। ओम सूर्य तुर्य विदोनिताय नमः स्वाहा। सर्वतुद्ध परिग्रहाय नमः स्वाहा। सर्वतुर्य विनोदिने नमः स्वाहा। व्यालरूपाय नमः स्वाहा। गुहावासिने नमः स्वाहा। गुहाय नमः स्वाहा। मालिने नमः स्वाहा। तरंगविदे नमः स्वाहा। त्रिदशाय नमः स्वाहा। त्रिकालरहिते नमः स्वाहा। कर्म संबंध विवेचनाय नमः स्वाहा। असुरेन्द्रानंदवदाय नमः स्वाहा। ओम युधि शत्रु विनाशाय नमः स्वाहा। सांग प्रसादाय नमः स्वाहा। दुर्वासने नमः स्वाहा। सर्वार्धिनिशीषाय नमः स्वाहा। प्रस्कंदाय नमः स्वाहा यज्ञ विभाग दे नमः स्वाहा अतुल्याय नमः स्वाहा यज्ञ विभाग दाय नमः स्वाहा सर्वसवाय नमः स्वाहा सर्वसारिणी नमः स्वाहा दुर्वासासे नमः स्वाहा ओम वासाय नमः स्वाहा अमराय नमः स्वाहा ओम हेमाय नमः स्वाहा ओम हेमकाराय नमः स्वाहा निष्कमाय नमः स्वाहा ओम सर्वधारिणी नमः स्वाहा धरोदत्ताय नमः स्वाहा लोहिताक्षाय नमः स्वाहा ओमाक्षाय नमः स्वाहा विजयाक्षाय नमः स्वाहा विशारदाय नमः स्वाहा सहस्राय नमः स्वाहा ओनिग्राय नमः स्वाहा ओकर्त्रे नमः ओम सर्वपरिचरणिसाय नमः स्वाहा सर्वपरिचिर निवासानाय नमः स्वाहा मुख्याय नमः स्वाहा अमुख्याय नमः स्वाहा ओम देहाय नमः स्वाहा ओम कहालाय नमः स्वाहा सर्वकामदाय नमः स्वाहा सर्वकाल प्रसादाय नमः स्वाहा ओम सुबलासाय नमः स्वाहा ओम बलरूपधीते नमः स्वाहा सर्वकामवराय नमः स्वाहा ओम सर्वकाय नमः स्वाहा सर्वतोमुखाय नमः स्वाहा आकाशनिवासाय नमः स्वाहा निपातिने नमः स्वाहा अवसाय नमः स्वाहा ओम खगाय नमः स्वाहा ओम रौद्रूपाय नमः स्वाहा अंशवे नमः स्वाहा आदित्याय नमः स्वाहा बहुरश्मे नमः स्वाहा ओम सुवर्चिने नमः स्वाहा ओम वसुवेगाय नमः स्वाहा महावेगाय नमः स्वाहा मनवेगाय नमः स्वाहा निशाचराय नमः स्वाहा सर्ववासिने नमः स्वाहा श्रेयवासिने नमः स्वाहा उपदेशकराय नमः स्वाहा ओम अकराय नमः स्वाहा ओम मुनये नमः स्वाहा आत्मनिरलोकनाय नमः स्वाहा ओम संभवाय नमः स्वाहा संमग्नाय नमः स्वाहा सहस्रदाय नमः स्वाहा ओम पक्षिणे नमः स्वाहा ओम पक्षरूपाय नमः स्वाहा अधिशिप्ताय नमः स्वाहा विषामतमये नमः स्वाहा ओम उन्मादाय नमः स्वाहा ओम मदनाय नमः स्वाहा ओम कामाय नमः स्वाहा ओम असस्ताय नमः स्वाहा ओम अर्थकाराय नमः स्वाहा ओम असये नमः ओम वामदेवाय नमः ओम वामदेवाय नमः ओम वामाय नमः स्वाहा ओम प्राचे नमः ओम स्वाहा ओम दक्षिणाय नमः ओम स्वाहा ओम वामनाय नमः स्वाहा ओम सिद्धोगिने नमः स्वाहा ओम महर्षये नमः स्वाहा ओम सिद्धार्थाय नमः स्वाहा ओम सिद्धसाधकाय नमः स्वाहा विच्छवे नमः स्वाहा भिक्षुरूपाय नमः स्वाहा विपणाय नमः स्वाहा मृदवे नमः स्वाहा अभयनाय नमः स्वाहा विशाखाय नमः स्वाहा षष्ठीभागाय नमः स्वाहा ओम गवापतये नमः स्वाहा भद्रहस्ताय नमः स्वाहा ओम पिनाकाय नमः स्वाहा सदाशिवाय नमः स्वाहा नाउ इन
1: 360
0: हो गया जस्ट वी फिनिश
1: yeah
0: 700 सो this is good meditation keep continuing meditation kali yuga om biskambine namaha swaha chamustamanaaya namaha swaha vrittavittakaraaya namaha swaha taalaaya namaha swaha madave namaha swaha madukulochanaaya namaha swaha vachaspataaya namaha swaha vajasenaaya namaha swaha nityamaashrita pujitaaya namaha swaha brahmachariine namaha swaha lokachariine namaha स्वाहा सर्वचारिणे नमः स्वाहा विचारविदे नमः स्वाहा ओम ईशानाय नमः स्वाहा ओम ईश्वराय नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा निशाचरिणे नमः स्वाहा पिनाकवृत्ते नमः स्वाहा ओम निमित्तस्थान नमः स्वाहा ओम निमित्ताय नमः स्वाहा ओम नन्दये नमः स्वाहा ओम नन्दिकराय नमः स्वाहा ओम हरये नमः स्वाहा ओम नन्दीश्वराय नमः स्वाहा ओम नन्दिने नमः स्वाहा ओम नन्दाय नमः स्वाहा नन्दिगोवर्धनाय नमः स्वाहा ओम भागहरिणे नमः स्वाहा नियश्रये नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा पितामहाय नमः स्वाहा चतुर्मुखाय नमः स्वाहा ओम महालिंगाय नमः स्वाहा ओम चारुलिंगाय नमः स्वाहा ओम लिंगाध्यक्षाय नमः स्वाहा ओम सुराध्यक्षाय नमः स्वाहा ओम योगाध्यक्षाय नमः स्वाहा युगवहाय नमः स्वाहा बीजाध्यक्षाय नमः स्वाहा बीजकर्ते नमः स्वाहा अध्यात्मनागतनाय नमः स्वाहा बलाय नमः स्वाहा इतिहासाय नमः स्वाहा सकल्पाय नमः स्वाहा गौतमाय नमः स्वाहा निशकराय नमः स्वाहा दम्भाय नमः स्वाहा ओम अमदाय नमः स्वाहा ओम वेदम्भ्याय नमः स्वाहा ओम वैश्याय नमः स्वाहा वसकराय नमः स्वाहा कलये नमः स्वाहा ओम लोकर्ते नमः स्वाहा ओम पशुपतये नमः स्वाहा ओम महाकर्ते नमः स्वाहा ओम अनौषधाय नमः स्वाहा ओम अक्षराय नमः स्वाहा ओम परमाय नमः स्वाहा ओम परमाय ब्राह्मणे नमः स्वाहा ओम बलवते नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम नित्ये नमः ओम अनित्ये नमः ओम शुद्धात्मने नमः स्वाहा ओम शुद्धाय नमः स्वाहा ओम मान्याय नमः स्वाहा ओम गतागताय नमः स्वाहा ओम बहुप्रसदाय नमः स्वाहा ओम सुप्रश्नाय नमः स्वाहा ओम दर्पणाय नमः स्वाहा ओम अमित्रजिते नमः स्वाहा ओम वेदकाराय नमः स्वाहा ओम मंसकाराय नमः स्वाहा ओम विदिशे नमः स्वाहा ओम समरदर्दनाय नमः स्वाहा ओम महाभिनिशाय नमः स्वाहा ओम महाघोराय नमः स्वाहा ओम वसिने नमः स्वाहा ओमकराय नमः स्वाहा अमनिज्वलाय नमः स्वाहा महाज्वलाय नमः स्वाहा ओम आदि विदुम्नाय नमः स्वाहा ओम हुताय नमः स्वाहा ओम विशे नमः स्वाहा विषाय नमः स्वाहा संग्राय नमः ओम नित्यवर्षिणे सो नमः ओम धूम्रकेताय नमः स्वाहा ओम नीलपराय नमः स्वाहा ओम आंगुलद्याय नमः स्वाहा ओम शोभनाय नमः स्वाहा ओम निवर्गाय नमः स्वाहा स्वस्तिदाताय नमः जी तो है शिष्याय नमः ओम स्वति भावाय नमः ओम भागिने नमः ओम भागकराय नमः स्वाहा ओम लघवे नमः स्वाहा उत्सन्नाय नमः स्वाहा महंकराय नमः स्वाहा महागरपराय नमः स्वाहा कृष्णवचाय नमः स्वाहा सुवर्णाय नमः स्वाहा ओम सर्वदेहिनाम इंद्रियाय नमः स्वाहा ओम महापादकाय नमः स्वाहा महाहस्ताय नमः स्वाहा महाकायाय नमः स्वाहा महायशसे नमः स्वाहा महाग्रभूमे नमः स्वाहा महामात्राय नमः स्वाहा महानेत्र्याय नमः स्वाहा निशालाय नमः स्वाहा महाकांताय नमः स्वाहा महाकर्णाय नमः स्वाहा महेष्टाय नमः स्वाहा हणवे नमः स्वाहा महाहणवे नमः स्वाहा मानसाय नमः स्वाहा महागम्भवे नमः स्वाहा महागविषाय नमः स्मरसानभाजे नमः महाभक्षे नमः ओम महेश्वराय नमः स्वाहा मरुरसकाय नमः स्वाहा अंतरात्मने नमः स्वाहा मृगालाय नमः स्वाहा ओम लंबानाय नमः स्वाहा ओम लंबिस्थोसाय नमः स्वाहा महामायाय नमः स्वाहा ओम स्वाहा मयोपदानीय नमः स्वाहा पयोनिधये नमः स्वाहा महादंताय नमः स्वाहा महाद्रष्टाय नमः स्वाहा महाजीवाय नमः स्वाहा ओम महामुखाय नमः स्वाहा महानखाय नमः स्वाहा महासुराय नमः स्वाहा महाकोशाय नमः स्वाहा महाजटाय नमः स्वाहा प्रसन्नाय नमः स्वाहा ओम प्रसादाय नमः स्वाहा ओम प्रपत्याय नमः स्वाहा गिरिसाधनाय नमः स्वाहा स्नेहाय नमः स्वाहा ओम आश्रयाय नमः स्वाहा ओम अजिताय नमः स्वाहा महामुनये नमः स्वाहा वृक्षकाराय नमः स्वाहा वृक्षकेतवे नमः स्वाहा अनलाय नमः स्वाहा बाहुबायनाय नमः स्वाहा गंडलिने नमः स्वाहा मेरुदाग्ने नमः स्वाहा मेरुधाम्ने नमः स्वाहा देवादि नमः स्वाहा देवाधिपतये नमः स्वाहा अथर्ववर्षीयाय नमः स्वाहा सामवर्षीयाय नमः स्वाहा साक्षसामिश्राय नमः स्वाहा ऋक्सहस्रामित्यक्षणाय नमः स्वाहा ओम यजुपादभुजाय नमः स्वाहा ओम गुह्याय नमः स्वाहा प्रकाशाय नमः स्वाहा जंगमाय नमः स्वाहा अमोघराय नमः स्वाहा प्रसदाय नमः स्वाहा अभिज्ञाय नमः स्वाहा ओम सुदर्शनाय नमः स्वाहा उमकराय नमः स्वाहा ओम प्रियाय नमः स्वाहा ओम सर्वाय नमः स्वाहा कनकाय नमः स्वाहा कंचन छवये नमः स्वाहा ओम नाभये नमः स्वाहा नंदिकाराय नमः स्वाहा ओम भावाय नमः स्वाहा पुष्कर स्थापते नमः स्वाहा ओम स्थिराय नमः स्वाहा द्वादशाय नमः स्वाहा ओम त्रासनाय नमः स्वाहा ओम आद्याय नमः स्वाहा ओम यज्ञाय नमः स्वाहा यज्ञ सहिताय नमः स्वाहा नक्तम नमः ओम कलये नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा ओम मकराय नमः स्वाहा ओम कालपूजिताय नमः स्वाहा ओम सगुणाय नमः स्वाहा ओम गुणकराय नमः स्वाहा ओम भूत वाहन सारथे नमः स्वाहा ओम भस्माय नमः स्वाहा भस्मधाराय नमः स्वाहा भस्मगोतने नमः स्वाहा भस्मसयाय नमः स्वाहा भस्मगोतने नमः स्वाहा भस्मभूताय नमः स्वाहा ओम तरवे नमः स्वाहा ओम गणाय नमः स्वाहा लोकपालाय नमः स्वाहा अलोकाय नमः स्वाहा ओमात्मने नमः स्वाहा ओम सर्वपूजिताय नमः स्वाहा ओम शुक्लाय नमः स्वाहा त्रिशुकाय नमः स्वाहा संपन्नाय नमः स्वाहा अशुचय नमः स्वाहा भूत निविशिताय नमः स्वाहा ओम आश्रमासाय नमः स्वाहा क्रियावस्थाय नमः स्वाहा विश्वकर्मपतये नमः ओम ओम बराय नमः स्वाहा ओम विशाल शाखाय नमः स्वाहा ओम प्रतिष्ठाय नमः स्वाहा इट्स हाफ ऑफ द वे नाउ ओके आई थिंक वी विल नीड
1: need rice more.
0: हरि ओम ओम अम्बुजालाय नमः स्वाहा सुनिश्चलाय नमः स्वाहा कपिलाय नमः स्वाहा कपिसाय नमः स्वाहा शुक्लाय नमः स्वाहा आयुषे नमः स्वाहा ओम अपराय नमः स्वाहा ओम पराय नमः स्वाहा ओम गंधर्वाय नमः स्वाहा ओम आदित्ये नमः स्वाहा तक्षरताय नमः स्वाहा सुविज्ञाय नमः स्वाहा सुशारदाय नमः स्वाहा परशुधायुधाय नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा ओम सुशारदाय नमः स्वाहा परशुधायुधाय नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा ओम अनुकारणे नमः स्वाहा सुबान्धवाय नमः स्वाहा तुम्बणिदाय नमः स्वाहा महाक्रोधाय नमः स्वाहा ऊर्ध्वरेतसे नमः स्वाहा जलेशयाय नमः स्वाहा उग्नाय नमः वसंकराय नमः स्वाहा ओम वंशाय नमः स्वाहा वंशनादानाय नमः स्वाहा अविन्दाय नमः स्वाहा अनिन्दिताय नमः स्वाहा सर्वांगरूपाय नमः स्वाहा मायाविने नमः स्वाहा ओम सुरिदाय नमः स्वाहा अनिलाय नमः स्वाहा अनलघाय नमः स्वाहा बंदनाय नमः स्वाहा बंदकर्ते नमः स्वाहा सुबंधमीजाय नमः स्वाहा सहसारगे नमः स्वाहा सहज्ञानरथे नमः स्वाहा सकारमानाय नमः स्वाहा महाद्रष्टाय नमः स्वाहा मायायुधाय नमः स्वाहा बहुधानिन्त्याय नमः स्वाहा ओम सर्वाय नमः स्वाहा ओम शंकराय नमः स्वाहा ओम अगनाय नमः स्वाहा ओम अमरेशाय नमः स्वाहा ओम महादेवाय नमः स्वाहा ओम विश्वदेवाय नमः स्वाहा ओम सुराग्रिणी नमः स्वाहा अहिर्भुद्याय नमः स्वाहा अनिलाभाय नमः स्वाहा शेखितानाय नमः स्वाहा हविषे नमः ओम अजय पातके नमः स्वाहा अजय कपाते नमः स्वाहा ओम कापिले नमः स्वाहा त्रिशंके नमः स्वाहा अजिताय नमः स्वाहा ओम शिवाय नमः स्वाहा ओम धनंतरे नमः स्वाहा ओम धूमकेतवे नमः स्वाहा ओम स्कंदगाय नमः स्वाहा वैष्णवाय नमः स्वाहा ओम धात्रे नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम मित्राय नमः स्वाहा ओम तोष्ट्रे नमः स्वाहा ओम ग्रीवाय नमः स्वाहा ओम धराय नमः स्वाहा ओम प्रभवाय नमः स्वाहा ओम सर्वाय वाय नमः स्वाहा सर्वगाय वायवे नमः स्वाहा अर्थमे नमः स्वाहा सवित्रे नमः स्वाहा ओम रवये नमः स्वाहा ओम संगे नमः स्वाहा विधात्रे नमः स्वाहा ओम मान्धात्रे नमः स्वाहा भूतभावनाय नमः स्वाहा ओम विभवे नमः स्वाहा ओम बणविवाहिने नमः स्वाहा ओम सर्वकामगुणाय नमः स्वाहा सर्वकामगुणवाहाय नमः स्वाहा पद्मनाभाय नमः स्वाहा महागर्भाय नमः स्वाहा चन्द्रवस्त्राय नमः स्वाहा अनिलाय नमः स्वाहा अनलाय नमः स्वाहा बलवते नमः स्वाहा उपशान्ताय नमः स्वाहा पुराणाय नमः स्वाहा पुण्यसञ्चने नमः स्वाहा ओम ए नाम स्वाहा कुरुकर्त्रे नमः स्वाहा ओम कुरुवासिने नमः स्वाहा कुरुभूताय नमः स्वाहा ओम गुणदोषाय नमः स्वाहा ओम सर्वासाय नमः स्वाहा धर्मचारिणी नमः स्वाहा सर्वेषां प्राणिनां पतये नमः स्वाहा ओम देवादेवाय नमः सुमुख शक्ताय नमः स्वाहा ओम सते नमः स्वाहा ओम असते नमः स्वाहा ओम सर्वरत्नवियेद नमः स्वाहा ओम कैलासगिरिवासिने नमः स्वाहा हिमविद्नि संस्थाय नमः स्वाहा हिमबद्धि सहस्रसाय नमः स्वाहा ओम कुलहारिणे नमः स्वाहा ओम कुलकत्रे नमः स्वाहा ओम बहुविद्याय नमः स्वाहा ओम बहुप्रदाय नमः स्वाहा ओम वाणिज्याय नमः स्वाहा ओम वरदकिने नमः स्वाहा ओम वृक्षाय नमः स्वाहा ओम वकिलाय नमः स्वाहा ओम चंदनाय नमः स्वाहा ओम छदाय नमः स्वाहा ओम अलोलाय नमः स्वाहा ओम सारग्रीवाय नमः स्वाहा ओम महाजत्रे नमः स्वाहा ओम अलोचाय नमः स्वाहा महासौदाय नमः स्वाहा सिद्धकारिणी नमः स्वाहा ओम छदाय नमः स्वाहा ओम चंदनाय नमः स्वाहा ओम वृक्षाय नमः स्वाहा वरदकिने नमः स्वाहा वाणिज्याय नमः स्वाहा वकिलाय नमः स्वाहा बहुप्रदाय नमः स्वाहा बहुविद्याय नमः स्वाहा सिद्धार्थकारिणी नमः स्वाहा सिद्धार्थ छंदो व्याकरणोत्तराय नमः स्वाहा सिंहनादनाय नमः स्वाहा सिंह धर्मराष्ट्राय नमः स्वाहा सिंहगाय नमः स्वाहा सिंहवाहनाय नमः स्वाहा प्रभात्मने नमः स्वाहा जगत्कालस्थनाय नमः स्वाहा लोकहिताय नमः स्वाहा अमतरवे नमः स्वाहा सारंजाय नमः स्वाहा नवसक्रांगाय नमः स्वाहा अमकेतुमालिने नमः स्वाहा सवानाय नमः स्वाहा भूतालयाय नमः स्वाहा भूतपतये नमः स्वाहा अहोरात्राय नमः स्वाहा अग्निदिताय नमः स्वाहा सर्वभूतानां बाह्यत्रये नमः स्वाहा अवनिलाय नमः स्वाहा अभिभवे नमः स्वाहा भवनाय नमः स्वाहा अमोघाय नमः स्वाहा संगताय नमः स्वाहा अश्वाय नमः स्वाहा भोजनाय नमः स्वाहा प्राणधाराय नमः स्वाहा घृतमिदे नमः स्वाहा अमिताय नमः स्वाहा अमदक्षाय नमः स्वाहा सत्कृताय नमः स्वाहा युगधापिताय नमः स्वाहा गोपालाय नमः स्वाहा गोपतये नमः ओम ग्रामाय नमः स्वाहा गोमवर्चनाय नमः स्वाहा ओम हरये नमः स्वाहा ओम हिरण्यवाय नमः स्वाहा प्रवेशिनाय नमः स्वाहा गुहालपालाय नमः स्वाहा प्रकृष्टाराय नमः स्वाहा महर्षाय नमः स्वाहा जितकामाय नमः स्वाहा जितेन्द्राय नमः स्वाहा ओम गंधधराय नमः स्वाहा उषताय नमः स्वाहा 720
1: लिफ्ट
0: या नो नो वी क्रॉस्ड तपस्सक्ताय नमः स्वाहा ओम रतये नमः स्वाहा ओम नराय नमः स्वाहा महागीताय नमः स्वाहा मायानित्याय नमः स्वाहा अप्सरो गण वेत्ये शिवाय नमः स्वाहा महाकेतवे नमः स्वाहा महाधातवे नमः स्वाहा नेनक्यसुनुचार्ये नमः स्वाहा नेकसानुचराय नमः स्वाहा ओम चलाय नमः स्वाहा ओम आवेदनीयाय नमः स्वाहा आदेशयाय नमः स्वाहा सगंध सुखावहाय नमः स्वाहा तोरणाय नमः स्वाहा ओम तारणाय नमः स्वाहा ओम बाताय नमः स्वाहा परिधने नमः स्वाहा परिखेचराय नमः स्वाहा संयोगार्थ वर्धनाय नमः स्वाहा संयोगाय वर्धनाय नमः स्वाहा ओम वृद्धाय नमः स्वाहा अतिवृद्धाय नमः स्वाहा ओम अतिविद्याय नमः स्वाहा ओम गुणाधिकाय नमः स्वाहा ओम नित्यामात्म सहाय नमः स्वाहा देवासुरपतये नमः स्वाहा ओम पतये नमः स्वाहा ओम युक्ताय नमः स्वाहा ओम युक्तभावे नमः स्वाहा देवी सुपर्णे नमः स्वाहा असडाय नमः स्वाहा ओम सुपर्षाय नमः स्वाहा ओम ध्रुवाय नमः स्वाहा ओम हरिणाय नमः स्वाहा ओम हराय नमः स्वाहा आवर्तमाने भीवसे नमः स्वाहा ओम वसुश्रेष्ठाय नमः स्वाहा महापथाय नमः स्वाहा ओम शिरोमणि नमः स्वाहा सर्वलक्षण सिद्धाय नमः स्वाहा अक्षाय रथ योगिने नमः स्वाहा ओम सर्वयोगिने नमः स्वाहा महाबलाय नमः स्वाहा सामग्नाय नमः स्वाहा ओम अस्मायानाय नमः स्वाहा तीर्थदेवाय नमः स्वाहा महारथाय नमः स्वाहा निर्विजयाय नमः स्वाहा ओम जीवनाय नमः स्वाहा ओम मंत्राय नमः स्वाहा ओम मंचाय नमः स्वाहा ओम शुभाक्षाय नमः स्वाहा बहुकर्णनाय नमः स्वाहा ओम रत्नभूताय नमः रत्नंगाय नमः स्वाहा महाबनी पाणिदेयाय नमः स्वाहा महार्णबणी पानविदे नमः स्वाहा ओम मूलाय नमः स्वाहा ओम विशलाय नमः स्वाहा ओम अमृताय नमः स्वाहा ओम व्यक्त्याय नमः स्वाहा ओम तपोनिधे नमः स्वाहा ओम आरोहराय नमः स्वाहा आधिरोहाय नमः स्वाहा शीलधारिणे नमः स्वाहा ओम महायसने नमः स्वाहा ओम सेनाकल्पाय नमः स्वाहा ओम महाकल्पाय नमः स्वाहा ओम योगाय नमः स्वाहा ओम योगकराय नमः स्वाहा ओम हरये नमः स्वाहा ओम युगरूपाय नमः स्वाहा ओम महारूपाय नमः ओम स्वाहा महानगनाय नमः स्वाहा ओम महानागनाहाय नमः स्वाहा ओम बधाय नमः ओम स्वाहा महानागगणाय नमः स्वाहा ओम न्याय निर्वाणाय नमः स्वाहा ओम मातपदाय नमः स्वाहा ओम पादाय नमः स्वाहा ओम पंडिताय नमः स्वाहा ओम असलोपदाय नमः स्वाहा बहुमालाय नमः स्वाहा महामालाय नमः स्वाहा शशिनी हरसुलोचनाय नमः स्वाहा ओम विस्ताराय लवणाय कृपाय नमः स्वाहा ओम त्रियुगाय नमः स्वाहा ओम सफलदयाय नमः स्वाहा अप्रतिलोचनाय नमः स्वाहा विष्णवे नमः स्वाहा मणिसिद्धाय नमः स्वाहा ओम जटाधराय नमः स्वाहा ओम बिंदवे नमः स्वाहा ओम विसर्गाय नमः स्वाहा सुमुखाय नमः स्वाहा ओम सराय नमः स्वाहा ओम सारुभूताय नमः स्वाहा ओम सर्वायुधाय नमः स्वाहा ओम सहायाय नमः स्वाहा निवेदनाय नमः स्वाहा सुखा जाताय नमः स्वाहा सुगंधाराय नमः स्वाहा महाधनुषे नमः स्वाहा गंधपालिने नमः स्वाहा ओमशंकराय नमः स्वाहा उत्थानाय नमः स्वाहा ओमंथनाय बाहुबलये नमः स्वाहा मंधाननाय बहुल बावे नमः स्वाहा ओमशकलाय नमः स्वाहा सर्वलोचनाय नमः स्वाहा तलस्थालाय नमः स्वाहा करस्थालिने नमः स्वाहा ऊर्ध्वसमनाननाय नमः स्वाहा ओमहते नमः स्वाहा ओमछत्राय नमः स्वाहा सुछत्राय नमः स्वाहा वीरव्यातलकाय नमः स्वाहा सर्वाक्षताय क्रमाय नमः स्वाहा ओमुन्नाय नमः स्वाहा ओम विरूपाय नमः स्वाहा ओम विकृताय नमः स्वाहा ओम दंडिने नमः स्वाहा ओम कुन्निने नमः स्वाहा विकुर्णवणाय नमः स्वाहा अरिहेच्छाय नमः ओम कुंभाय नमः स्वाहा ओम ककुभाय नमः स्वाहा ओम वज्रिणे नमः स्वाहा ओम शतविजाय नमः स्वाहा सहस्रपादे नमः स्वाहा सहस्र सुभद्रे नमः स्वाहा ओम देवेन्द्रराय सर्वदेव मापाय नमः स्वाहा ओम गुरवे नमः स्वाहा ओम सहस्रभावे नमः स्वाहा ओम सर्वांगाय नमः स्वाहा ओम शरण्याय नमः स्वाहा ओम सर्वलोककृते नमः स्वाहा ओम पैत्राय नमः स्वाहा त्रिककुळे मत्राय नमः स्वाहा कनिष्ठाय नमः स्वाहा कृष्णपिंगलाय नमः स्वाहा ब्रह्मदंड विनिर्माताय नमः स्वाहा शतग्नि वास शक्तिमे नमः स्वाहा पद्मगर्भाय नमः स्वाहा महागर्भाय नमः स्वाहा ब्रह्मगर्भाय नमः स्वाहा ओम जलोद्भवाय नमः स्वाहा गवस्ते नमः स्वाहा ब्रह्मकृते नमः स्वाहा ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा ब्रह्माविदे नमः स्वाहा ओम ब्राह्मणाय नमः स्वाहा ओम गतये नमः स्वाहा अनंत रूपाय नमः स्वाहा ओम नैकात्मने नमः स्वाहा ओ स्वयंभू तिग्म तेजसे नमः स्वाहा ऊर्ध्वगामद्मे नमः स्वाहा उपस्पदे नमः स्वाहा बातहराय नमः स्वाहा मनोजवाय नमः स्वाहा चंदनीये नमः स्वाहा चंदनीने नमः स्वाहा पद्मनालग्राय नमः स्वाहा सुरम्य भूतरणाय नमः स्वाहा ओम नराय नमः स्वाहा कणिकार महास्रग्विणे नमः स्वाहा ओम नीलमौलये नमः स्वाहा ओ पिनाकधृते नमः स्वाहा उमापतये नमः स्वाहा उमाकांताय नमः स्वाहा जाह्वविभृते नमः स्वाहा उमाधवाय नमः स्वाहा ओम बाराय बाराय नमः स्वाहा ओम वरदाय नमः स्वाहा ओम वरेण्याय नमः स्वाहा ओम सुमहास्वाय नमः स्वाहा महाप्रसादाय नमः स्वाहा दमनाय नमः स्वाहा शत्रुघ्ने नमः स्वाहा श्वेतपिंगलाय नमः स्वाहा प्रीतात्मने नमः स्वाहा परमात्मने नमः स्वाहा प्रयात्मने नमः स्वाहा प्रधानधृते नमः स्वाहा सर्वपार्श्वमुखाय नमः स्वाहा ओम त्रास्ख्याय नमः स्वाहा धर्मसाधने नमः ओम धर्मसाधारणोपराय जन्मः स्वाहा चराचरात्मने नमः स्वाहा सूक्ष्मात्मने नमः स्वाहा अमृताय गोगविशेश्वराय नमः स्वाहा शारदस्याय नमः स्वाहा ओम वसुरादित्याय नमः स्वाहा विश्वदवस्य नमः स्वाहा विश्वते सवितामृताय नमः स्वाहा ओम व्यासाय नमः स्वाहा ओम स्वर्गाय शृंगोपाय विस्ताराय नमः स्वाहा पर्यायोनराय नमः स्वाहा ओम ऋतये नमः स्वाहा ओम संवत्सराय नमः स्वाहा ओम मासाय नमः स्वाहा ओम पाक्ष्याय नमः स्वाहा ओम शंका समनाय नमः स्वाहा ओम कलाभ्यो नमः स्वाहा काष्ठाभ्यो नमः स्वाहा लवेभ्यो नमः स्वाहा मातृभ्यो नमः स्वाहा मुहूर्ताभ्य क्षेपाश्यो नमः स्वाहा ओम वणशिभ्यो नमः स्वाहा क्षणभ्यो नमः स्वाहा विषम क्षेत्राय नमः स्वाहा 920 ओम विश्व क्षेत्राय नमः स्वाहा प्रजा विजाय नमः स्वाहा ओम लिंगाय नमः स्वाहा आद्याय निर्गमाय नमः स्वाहा ओम सते नमः स्वाहा ओम असते नमः स्वाहा ओम व्यक्ताय नमः स्वाहा ओम अव्यक्ताय नमः स्वाहा पितृ नमः स्वाहा मातृ नमः स्वाहा ओम पितामहाय नमः स्वाहा स्वर्गद्वाराय नमः स्वाहा प्रजाद्वाराय नमः स्वाहा मोक्षद्वाराय नमः स्वाहा त्रिविष्टापाय नमः स्वाहा निर्वाणाय नमः स्वाहा ओम राधनाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मलोकाय नमः स्वाहा ओम पराय गत्ये नमः स्वाहा ओम देवासुर विनिमात्रे नमः स्वाहा देवासुर परायणाय नमः स्वाहा ओम देवासुर गुरुवे नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा देवासुर नमस्कृताय नमः स्वाहा देवासुर महामात्राय नमः स्वाहा देवासुर गणाक्षत्राय नमः स्वाहा देवासुर गणाध्यक्षाय नमः स्वाहा देवासुर गणैर्घृत्यै नमः स्वाहा देवी देवताय नमः स्वाहा देवादि देवताय नमः स्वाहा देवर्षये नमः स्वाहा देवासुर वरप्रदाय नमः स्वाहा देवासुरेश्वराय नमः स्वाहा ओमिश्वराय नमः स्वाहा ओमिश्वाय नमः स्वाहा देवासुर महेश्वराय नमः ओम सर्वदेवी मयाय नमः स्वाहा अंजिन्याय नमः स्वाहा देवतात्मने नमः स्वाहा आत्मसमवाय नमः स्वाहा उद्यमे नमः स्वाहा त्रिविक्रमाय नमः स्वाहा ओमेदाय नमः स्वाहा विरजाय नमः स्वाहा नीरजाय नमः स्वाहा अमराय नमः स्वाहा इडाय नमः स्वाहा ओमहस्तीश्वराय नमः स्वाहा बेग्राय नमः स्वाहा देवसीमाय नमः स्वाहा नरऋषभाय नमः स्वाहा विबुधाय नमः स्वाहा अग्नबराय नमः स्वाहा सूक्ष्माय नमः स्वाहा सर्वदेवाय नमः स्वाहा तपोमाय नमः स्वाहा ओम सुक्ताय नमः स्वाहा सुयुक्ताय नमः स्वाहा शिवनाय नमः स्वाहा वज्रिणे नमः स्वाहा प्रसन्न प्रभाय नमः स्वाहा अभिवाय नमः स्वाहा
2: जी
0: ओम शिवनाय नमः स्वाहा वज्रिणे नमः स्वाहा प्रसन्न प्रभाय नमः स्वाहा ओम निसर्गाय नमः स्वाहा ओम पवित्राय नमः स्वाहा सर्व पावनाय नमः

0: स्वाहा अविरामाय नमः, स्वाहा सुरगणाय नमः, स्वाहा विरामाय नमः, स्वाहा सर्वसाधनाय नमः, स्वाहा ललाटाक्षराय नमः, स्वाहा विश्वदेवाय नमः, स्वाहा हरिणाय नमः, स्वाहा ब्रह्मवर्चसामाय नमः, स्वाहा स्थावरणाम नमः, स्वाहा स्थानपतये नमः, स्वाहा स्थावरणाम पतये नमः, स्वाहा नियमेन्द्रिय वर्धनाय नमः, स्वाहा सिद्धार्थाय नमः, स्वाहा सिद्धभूतार्थाय नमः, स्वाहा अंचित्याय नमः, स्वाहा सत्यव्रताय नमः, स्वाहा शुचये नमः, स्वाहा व्रताधिपाय नमः, स्वाहा ओम परस्परे नमः, स्वाहा ओम ब्राह्मणे नमः, स्वाहा ओम भक्तानां पुरयाय गतवे नमः, स्वाहा ओम विमुक्ताय नमः, स्वाहा ओम मुक्ततेजसे नमः, स्वाहा ओम श्रीमते नमः, स्वाहा श्रीवर्धनाय नमः, स्वाहा ओम जगतपतये नमः, स्वाहा इति शिव सहस्त्र नामावली शिवार्पणम् स्वाहा। हर हर महादेव। शिव जी के 11
1: 1008
0: names। तो शिव जी को वो करके फिर करते हैं। बचा है, बचा, वेट वेट है। तो 11 times we everyone chant Om Namah Shivaya Swaha together. Okay.

स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। तो खड़ा होके पूर्णावती देंगे कंप्लीटली। नाउ एवरीवन स्टैंड अप एंड दिस इज द फाइनल सेक्रीफाइस एंड हवन। ये पूरा है, ये तो ये है नहीं यही ठीक है, इसी को धारण लगाता हूँ। हरि ही ओम। यहाँ पे बचा हुआ गिरा दीजिए। वट एवर लेफ्ट ओवर वी गोइंग टू ऑफर नाउ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्व वै पूर्ण स्वाहा, सर्व वै पूर्ण स्वाहा, सर्व वै पूर्ण स्वाहा। ओम वसो पवित्रमसी, वसो पवित्रेण सहस्रधारेण देवस्त्वा पुनातु सविता वसो। ओम शांति शांति शांति। फिर ये हाथ में लगाइए। हरि ही ओम। दो हाथ में लगा के अग्नि में दिखा के। ओम बलमसि बलमहि देई मन्योमसि।

ओजोसी ओज महीदेहि मन्युमसी मन्युमहीदेहि ओम शांति शांति शांति। द फाइनल पीस प्रेयर ओम देव शांति रंतरिक्ष गो शांति।

0: शांतिः शांतिः शांतिः। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा मृत्युर्मा लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरिओम अकाल मृत्युहरणं सर्व्याधि विनाशनं विष्णु पाददकं भित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चंदनं तु महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। जय बोलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को जय। सांब सदा शिव जी को जय। बोलिए प्यार से गणपति भगवान को जय। पशुपति नाथ को जय। सदा शिव को जय। चारों वेद को जय। महालक्ष्मी महासरस्वती को जय। चारों वेद को जय। सत्य सनातन धर्म को जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर महेश्वरानंद स्वामी जी को जय। हरिओम।
1: पंडित जी धन्यवाद।
0: हरिओम। थैंक यू वेरी मच।
1: एवरीवन डू योर सेल्फ टेक योर फिंगर एंड लाइक दिस एंड मेक तिलक ओके।
0: दे शुड डिप देयर सेल्फ। वी पुट लिटिल घी।

0: अलकपुरी जी महादेव की जय। देवाधि देव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की ओम। हरिओम हरिओम।
1: विश्वगुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।

सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्च दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दीप नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव की, माधव कृष्ण भगवान की, सनातन धर्म की जय। मीन्स ग्लोरी, जय मीन्स विक्टोरी, सो एंड जय मीन्स लॉन्ग लाइफ। सो वी ऑलवेज सेड द ग्लोरी विक्टोरी ऑफ गुरुदेव, विक्टोरी ऑफ द राइट हाउसनेस, द धर्मा, सनातन धर्मा।

0: श्रीदीप नारायण भगवान देवादिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन धर्म की ओम शांति।
1: Thank you.

0: नंद जी आपके चरण कमल बलिहारी है। श्रीदीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। अलकपुर जी महादेव की जय।
1: विश्वागुरु परमांशि स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।
0: फर्दर अबाउट द प्रेयर्स टुमारो।
1: A dál o modlitbě si budeme říkat
0: zítra. Om šanti, šanti, šanti.

विद्या चाहिए, बुद्धि को जैसी शिक्षा जैसा ज्ञान दोगे वैसा ही व्यक्ति सोचेगा बनेगा। व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन यू विल गेट लाइक दैट यू विल बी एंड यू विल थिंक लाइक दैट। इन द पुलिस ट्रेनिंग द पुलिसमैन गोज ही गेट द ट्रेनिंग फॉर द पुलिस how to act, how to behave, how to be. His thinking, his knowledge, a training makes him a police. A driver gets the knowledge how to drive and he becomes the driver. So the driver similarly चोर को भी ट्रेनिंग मिलती है तो वो चोर बनता है, आतंकवाद बनता है या और भी बनता है जैसी शिक्षा मिलती है। Therefore the intellect needs a particular education. Second, the education for the humans is a very important, and that is the spiritual and ethic principles, where one understands the value of the Sanatana values makes the human a human. So this, the education is from the master, from the guru. Only the language is different. You call master and in Hindi we say guru. That's all. झगड़ा केवल भाषा का है और कुछ भी नहीं। आप रामायण गीता पढ़ोगे तो मुसलमान शायद नहीं समझेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर वो कुरान में उर्दू पढ़ेंगे तो आप स्वीकार नहीं करोगे, क्यों आप नहीं समझ रहे हो। बात वही है, अच्छी बात रामायण भी कहती है, अच्छी बात कुरान भी कहती है, बाइबल भी कहती है, डिफरेंट इज ओनली द लैंग्वेज। इट्स ओनली वन, एक कहता है कि मेरे दादी सा है, कोई है। दूजा कहता है कि मारी मामी है, कोई है। तारा मामा री बू है, कोई मारी माँ है, मामी नहीं कहो। एक है हमारी दादी है, एक है हमारे माँ है, दूसरे कहता है हमारी बेटी है, तीसरे कहता है हमारी बहन है, और दूसरा कहता है हमारी बुआ है, दूसरा कहता है हमारे काकी है। आंटी नहीं ये बेटा, आजकल कह के आंटी, ये आंटी थारी बापरी आड़ी क्यों गंदी गंदी बातें करो है, काका काकी माजी बाजी वो करो। लेकिन दूसरा कहता मेरी बेटी है, हमारी पोती है, है वो महिला एक ही है कि नहीं, एक ही महिला है। नाम से बांट दिया, भाषा से बांट दिया, दादी है, माँ है, बेटी है, बहन है, बुआ है, काकी है, पोती है, बट है वो एक ही। सिमिलरली गॉड इज वन विच गॉड हैज नो नेम। And all are talking about a God for oneness. So this education, the ethic and spiritual education
we get in the Gurukul. Gurukul means school. अब हमारे हिंदुस्तान के लोगों को कहते हैं कि जाटन गुरुकुल में भर्ती करिया है, नहीं बाप जी हमारे गुरुकुल में नहीं जानो, हाँ हमारे स्कूल में जानो है। उन्होंने ठा तो है को नहीं, बाप जी हमारे टावरों ने हिंदी नहीं पढ़ानी, अंग्रेजी पढ़ाओ तो नौकरी लागी। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि तुम लोग इस प्रकार से सोचते हो कि हिंदी पढ़ाओ तो हमारे छोरा ने नौकरी नहीं लागे, नौकरी पड़ी खाडा रे माए। मनुष्य बनाओ बच्चे को, आज हिंदी का टीचर ही को नहीं मिले, संस्कृत का कोई मास्टर ही को नहीं मिले, न अंग्रेजी पढ़ी रहा रोता फिर झाड़ू लगावाने को नहीं लागे। इसलिए दुर्भाग्य है कि हम हमारी संस्कृति को छोड़ दिया, इसलिए कि तुम्हारे पास गुरु ज्ञान नहीं है, तुमने वो ज्ञान सीखा, तुमने वो संस्कार सीखे जो संस्कार तुम्हारे को आगे नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि वो संस्कार आपको वो संस्कृति नहीं बनाने देगा। संस्कारों से संस्कृति बनती है और संस्कृति से मानव बनता है, मानवता की देश की रक्षा करता है संस्कार। आज तो बस नौकरी चाहिए पे अंग्रेजी बोलो, नहंग जगह अंग्रेजी बोले बेटा, न केवल अंग्रेजी में भाषण दोगे, नहीं नहीं मैं हिंदी में बोलू बाप जी, बोलो आदि कचरी है। हमें अंग्रेजी बोले, मैंने कहा मैं रस तो पूछ कर जानो कि स्टेट, अरे बाबा जी स्टेट जाओ, अरे की स्टेट में जाऊं, गुजरात में जाऊं कि राजस्थान में जाऊं कि मध्य प्रदेश में जाऊं, हमें स्ट्रेट तो नहीं कह रहे, स्टेट स्टेट आ थोड़ी अंग्रेजी, अरे पूरी सीखी नहीं। बंगाल से एक लड़का गया इंग्लैंड पढ़ने के लिए, 3 साल के बाद वापस आया और रविंद्रनाथ टैगोर के पास गया, अंग्रेजी बोल रहा है, टैगोर साहब बंगाली बोल रहे हैं, तो टैगोर साहब बंगाली बोल रहे हैं तो वो टैगोर साहब को कह रहे मुझे अंग्रेजी पसंद है, तो टैगोर साहब ने कहा अच्छी बात है बोलो अंग्रेजी, वो 4 शब्द नहीं कियो, और टैगोर साहब ने कहा कि बेटा तू अंग्रेजी ही क्यों बिना ही तू बंगाली भूल गो है? तो तुम लोग अंग्रेजी पूरी ही क्यों बिना थे, मारवाड़ी ने राजस्थानी भूल गया, हमारी मातृभाषा है, उसके द्वारा ही उसी भाषा के द्वारा तुम्हारी शोभा है और दूसरी शोभा नहीं है। हमारे देश की संस्कृति वही काम आएगी। कहा है कि बणियाणी रेसी नहीं, रेसी सुधारी, होनारी परिजाव सी के बाबी कुमारी है, कि बणियाणी रे नी ने रेसी सुथारी, आ होनारी परी जाई के बाबी कुमारी। कौन कह रही है? रावण को, रावण की पत्नी, के रावण तू बना करके हट करके सीता को लाया, वो नहीं रहेगी, वो थाकी को नहीं है, रेसी सुथारी थारी है वो ही रहूंगी है, हट करियो तो होनारी लंका परी जाई। कौन कहवे? कुंभकर्ण की बाबी मंदोदरी कह रही है। तो इसलिए थे उदार लायोड़ी भाषा ने, पढ़ने पेट भरा मत करो, बुद्धि ज्ञान उसमें ज्ञान भरा है संस्कृति के अंदर में। एनी हाउ सॉरी दैट आई हैव टू स्पीक बिटवीन इन हिंदी एंड संस्कृत, आई डोंट नो, सो आई हैव टू स्पीक लिटिल बिट इंग्लिश बिकॉज ऑल ऑफ यू, बट आई एम टेलिंग दिस इंडियंस दे शुड लर्न देयर मदर टंग and then after they should learn English. They don't know English and they forgot the Hindi. I asked someone address,
I very wish the direction is going there. Oh, where is that place? So say state. State is not a path. Direction is straight. But वो straight तो आता नहीं है. और महाराज जी वो क्या कहते योगा के अंदर हमें तो हम कहते हैं अच्छा भाई अरे भाई गाड़ी चलाओ कॉन्सेंट्रेशन करो तो वो क्या कौन सा स्टेशन अरे बाप जी कौन सा स्टेशन चल रहा है वो नहीं लो कॉन्सेंट्रेशन ने कौन सा स्टेशन आधारी अंग्रेजी ने आधारी हिंदी सही बात है कि नहीं इसलिए दैट्स व्हाई गुरु पूर्णिमा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सनातन वैल्यूज ऑफ द ह्यूमन लाइफ ह्यूमन क्वालिटीज ह्यूमन एबिलिटीज दिस इज अ गुरु पूर्णिमा एंड देन इज अ वर्शिप्ड ऑफ दैट Divine who gave you the knowledge. Then is the birthday of Bhagavan Vedvyasa and every disciple adores, remembers to keep this living culture. So Guru Purnima is a festival of the culture to protect the culture. It's called the living culture. सनातन धर्म इज ए लिविंग धर्म सनातन धर्म इज ए लिविंग धर्म व्हाट डज इट मीन्स व्हाट मीन्स द लिविंग धर्म वन मदर गिव्स ए बर्थ टू ए चाइल्ड It is the dharma of the mother to give birth to the child. It's her dharma, wo sanatan dharma. A one tree gives you fruit. It is the dharma of the fruit tree to give the fruit. Ek maa bachche ko janam deti hai, bachchi ko janam deti hai, wo unka dharma jo hai, wo sanatan dharma hai. Aur is युग के अंदर इस आधुनिक युग में गुरु के बिना कोई काम चल ही नहीं सकता है कौन सा गुरु थारा मास्टर स्कूल में स्कूल के मास्टर आपके गुरु है इसलिए और सभी सिस्टम विल स्टॉप ब्लॉक बट The Sanatan Dharma Guru and Disciple will ever and ever will last. That's why it's called eternal religion of Sanatan. The relation of the mother, child, husband, wife, nature, etc., etc. Therefore, the Guru Purnima has a great meanings than other any festivals. हम मनाते हैं भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी वो एक ही जन्माष्टमी मन रही है लेकिन गुरु पूर्णिमा जो है अरबों खरबों महर्षि ऋषि मुनियों की और आने वाले संतों की वो बनती रहेगी वही इसीलिए that is the greatest festival That's called living festival. Guru Purnima is living festival. Jinda aur sab sampraday chali jayegi lekin ye sanatan sanskriti kabhi nahi mitegi kyunki ye shishya aur guru ka nata hai. Aap sabhi ko bahut bahut sadhuvad आप आए यू कैम ऑल वेलकम नाउ इज द टाइम फॉर प्रसाद देन आफ्टर विल बी भजन एंड भजन के बाद में आनंद और आनंद के बाद में
जागृत। तो जागृत, सुसुप्त और स्वप्न तीनों ही एक ही पंडाल के नीचे दर्शन होगा। कोई तो करेगा ऐसा, दूसरा कहेगा हाँ है। तो खाना पीना ने सोना और गाना सब यही पे होना के बाबू जी कमरों के कमरा तो गणे जा हुई जा, कमरा की कोई कमी नहीं है, हमें तो कमरा खूब है। माँ कोई नाग देवता बैठा वेला तो आ बारिश में खेत पानी भरियोड़ो हैंग है, जको ध्यान राख जो भाई सरप अरप आ जाता है, इसलिए इधर उधर जाते हो। और दूसरे ये बार बार हमेशा कहते हैं कि लोग चले जाते हैं लघु शंका करने के लिए, पेशाब करने के लिए इधर उधर, ये पानी हमारे तालाब में जाता है, पानी पीने को जाता है, बाथरूम बने हुए हैं उधर ही जाना। अब इस बार पुलिस वाले कह रहे हैं कि अगर आप को बाहर इधर उधर निपटते देखते हुआ तो पुलिस वाला फोटो लेगा। कहला कोई को नहीं, पुलिस वालों को मैंने ऐसा फोटो दे रखा, कैमरा दे रखा है, दूर से वो देख करके क्लिक करेंगे और कहेंगे बाप जी ओ अटे बैठो तो। इसलिए हमें उसी जगह जाना है जहां सुविधा दी हुई है, भजन होंगे रात्रि भर, आप भजन गाना, सुबह प्रोग्राम होगा 8 बजे, 8:30 बजे गुरु पूजा होगी गादी की, और उसके बाद में यहां से भी सज्जन आएंगे दर्शन करेंगे, तो कार्यक्रम चलता रहेगा। अब भोजन होगा तो आप सभी प्रसाद पाए, और आफ्टर वन आवर ईटिंग इट विल बी अगेन द सत्संग। विश यू ऑल द बेस्ट ऑल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स राउंड द वर्ल्ड। इफ यू वॉन्ट टू लिसन द भजन्स देन इट विल बी webcast and bhajans whenever you like, you can put on your television and you can see or hear the bhajan. Bol Sanatan Dharma ki Jai, Satguru Dev ki Jai।

0: ये निर्गुण से सगुण बन आए, भक्तन के हितकारी प्रभु, भक्तन के हितकारी। दिस वी हैव ट्रांसलेटेड यस्टरडे,
1: Tohle už jsme přeložili včera.
0: द थर्ड
1: Teď dál.
0: आप।

है। व्यापक विश्व चराचर में हरि चेतन ज्योत तुम्हारी है। निर्गुण से

0: जी आपके चरण कमल बलिहारी है। श्रीदीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। अलकपुर जी महादेव की जय।
1: विश्वा गुरु परमांशी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेवा की जय।
0: फर्दर अबाउट द प्रेयर्स टुमारो।
1: A dál o modlitbě si budeme říkat
0: ओम
1: zítra.
0: शांति शांति शांति।

పరమ సుఖదం కేవలం జ్ఞానమోర ద్వందాతీతం గగన సదృశ్యం తస్మస్యాది లక్ష్యం ఏకం అనిత్యం విమలచలం సర్వద్ది సాక్షిభూతం భావాతీతం త్రిగుణరహితం సద్గురుతం నమామ్యం. అదక్పురీ జీ మహాదేవ కీ, దేవాది దేవ్ శివ స్వరూప్ దేవపురీ జీ మహాదేవ కీ, ఆరాధ్య భగవాన్ శ్రీ దీప్ నారాయణ మహాప్రభు జీ కీ, ఆరాధ్య సద్గురుదేవ్ హిందూ ధర్మ సమ్రాట్ శ్రీ స్వామి మాధవానందపురి జీ మహారాజ్ కీ, సనాతన ధర్మ కీ, భక్త ఔర్ భగవాన్ కీ జయ. ఆరాధ్య గురుదేవ్ కే సభీ పరమ భక్త ధర్మ ప్రేమీ సజ్జనో, ఆజ్ కా దిన్ బడా హీ శుభ దిన్ హై. గురు పూర్ణిమ కా పర్వ, ఆప్ సభీ కో ఓం శ్రీ అలక్పురీ జీ సిద్ధపీఠ పరంపరా కీ ఓర్ సే ఆశీర్వాద్. బ్లెస్డ్ సెల్ఫ్, స్పిరిచువల్ సీకర్స్, బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ రౌండ్ ద వరల్డ్, టుడే on this holy occasion of Sri Guru Purnima, blessing is coming from Om Sri Alakpurij Siddhapeeth Parampara, Holy Land Bharat. Welcome all of you here and those who are in other countries. The Guru Purnima has many meanings. First, what Upanishad and Ved says, Tamso Ma Jyotirgamaya, lead us from the darkness to the light. అజ్ఞాన సి జ్ఞాన్ కి తరఫ్. ఆరాధ్య గురుదేవ్ శ్రీ స్వామి మాధవానందజీ భగవాన్ కేతే థే, జ్ఞానహీనా పశు సమానా, విదౌట్ నాలెడ్జ్ వన్ ఇస్ లైక్ ఎనిమల్. Knowledge is the light, and ignorance is the darkness. The light of the knowledge is not this physical light which we see with our physical eyes, but it is the light which is within ourselves, in each and every entity. But out of 8.4 million different creatures, human have got a special body and got a powerful tool that's called intellect. But the intellect, బుద్ధి జో హై, బుద్ధి కు జ్ఞాన విద్యా చాహియే. బుద్ధి
को जैसी शिक्षा जैसा ज्ञान दोगे वैसा ही व्यक्ति सोचेगा बनेगा. What kind of education you will get, like that you will be and you will think like that. In the police training, the policeman goes, he gets the training for the police, how to act, how to behave, how to be. His thinking, his knowledge, a training makes him a police. A driver gets the knowledge how to drive and he becomes the driver. So the driver, similarly, चोर को भी ट्रेनिंग मिलती है तो वो चोर बनता है, आतंकवाद बनता है या और भी बनता है जैसी शिक्षा मिलती है. Therefore, the intellect needs a particular education. Second, the education for the humans is very important, and that is the spiritual and ethic principles, where one understands the value of the Sanatana. The Sanatana values makes the human a human. So this, the education is from the master, from the guru. Only the language is different. You call master and in Hindi we say guru. That's all. झगड़ा केवल भाषा का है और कुछ भी नहीं. आप रामायण गीता पढ़ोगे तो मुसलमान शायद नहीं समझेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे. और अगर वो कुरान उर्दू पढ़ेंगे तो आप स्वीकार नहीं करोगे, क्यों आप नहीं समझ रहे हो. बात वही है. अच्छी बात रामायण भी कहती है, अच्छी बात कुरान भी कहती है, बाइबल भी कहती है. डिफरेंट इज ओनली द लैंग्वेज. इज ओनली वन. एक कहता है कि मेरे दादी सा है, कोई है. दूजा कहता है कि मारी मामी है, कोई है. तारा मामा री बू है, कोई. मारी माँ है, मामी नहीं कहना. एक है हमारी दादी है, एक है हमारे माँ है, दूसरे कहता है हमारी बेटी है, तीसरे कहता है हमारी बहन है, और दूसरा कहता है हमारी बुआ है, दूसरा कहता है हमारे काकी है. आंटी नहीं ये बेटा, आजकल कह के आंटी, ये आंटी थारी बापरी. आड़ी क्यों गंदी गंदी बातें करो है, काका काकी माजी बाजी वो करो. लेकिन दूसरा कहता है मेरी बेटी है, हमारी पोती है. है वो महिला एक ही है कि नहीं. एक ही महिला है, नाम से बांट दिया, भाषा से बांट दिया. दादी है, माँ है, बेटी है, बहन है, बुआ है, काकी है, पोती है, बट है वो एक ही. सिमिलरली गॉड इज वन, व्हिच गॉड हैज नो नेम. And all are talking about a God for oneness. So this education, the ethic and spiritual education we get in the Gurukul. Gurukul means school.
अब हमारे हिंदुस्तान के लोगों को कहते हैं कि जाटन गुरुकुल में भर्ती करिया है। नहीं बाप जी, हमारे गुरुकुल में नहीं जानो, हाँ हमारे स्कूल में जानो है। उन्होंने ठा तो है को नहीं, बाप जी हमारे टावरों ने हिंदी नहीं पढ़ा, नहीं अंग्रेजी पढ़ाओ तो नौकरी लागी। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि तुम लोग इस प्रकार से सोचते हो कि हिंदी पढ़ाओ तो हमारे छोरा ने नौकरी नहीं लागे। नौकरी पड़ी खाडा रे माए, मनुष्य बनाओ बच्चे को। आज हिंदी का टीचर ही को नहीं मिले, संस्कृत का कोई मास्टर ही को नहीं मिले, न अंग्रेजी पढ़ी रहा रोता फिरे मन झाड़ू लगावाने को नहीं रखे। इसलिए दुर्भाग्य है कि हम हमारी संस्कृति को छोड़ दिया, इसलिए कि तुम्हारे पास गुरु ज्ञान नहीं है। तुमने वो ज्ञान सीखा, तुमने वो संस्कार सीखे, जो संस्कार तुम्हारे को आगे नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि वो संस्कार आपको वो संस्कृति नहीं बनाने देगा। संस्कारों से संस्कृति बनती है और संस्कृति से मानव बनता है, मानवता की देश की रक्षा करता है संस्कार। आज तो बस नौकरी चाहिए पे अंग्रेजी बोलो, नहंग जगह अंग्रेजी बोले बेटा, न केवल अंग्रेजी में भाषण दोगे, नहीं नहीं मैं हिंदी में बोलू बाप जी, बोलो आदि कचरी है। हमें अंग्रेजी बोले, मैंने कहा मैं रस तो पूछ कर जानो कि स्टेट, अरे बाबा जी स्टेट जाओ, अरे की स्टेट में जाऊं, गुजरात में जाऊं कि राजस्थान में जाऊं कि मध्य प्रदेश में जाऊं, हमें स्ट्रेट तो नहीं कह रही, स्टेट स्टेट आथारी अंग्रेजी, अरे पूरी सीखी नहीं। बंगाल से एक लड़का गया इंग्लैंड पढ़ने के लिए, 3 साल के बाद वापस आया और रविंद्रनाथ टैगोर के पास गया, अंग्रेजी बोल रहा है, टैगोर साहब बंगाली बोल रहे हैं, तो टैगोर साहब बंगाली बोल रहे हैं, तो वो टैगोर साहब को कहते मुझे अंग्रेजी पसंद है, तो टैगोर साहब ने कहा अच्छी बात है बोलो अंग्रेजी, वो 4 शब्द नहीं कियो, और टैगोर साहब ने कहा कि बेटा तू अंग्रेजी ही क्यों बिना ही तू बंगाली भूल को है, तो तुम लोग अंग्रेजी पूरी ही क्यों बिना थे, मारवाड़ी ने राजस्थानी बोल गया, हमारी मातृभाषा है उसके द्वारा ही, उसी भाषा के द्वारा तुम्हारी शोभा है और दूसरी शोभा नहीं है। हमारे देश की संस्कृति वही काम आएगी। कहा है कि बणियाणी रेशी नहीं, रेसी सुधारी होनारी परिजाव सी के बाबी कुमारी है, कि बणियाणी रह नी ने रेसी सुथारी आ होनारी परिजाई के बाबी कुमारी। कौन कह रही है? रावण को, रावण की पत्नी के, रावण तू बना करके हट करके सीता को लाया, वो नहीं रहेगी, वो थाकी को नहीं है, रेसी सुथारी थारी है वो ही रहूंगी है, हट करियो तो होनारी लंका परी जाई। कौन केवे कुंभकर्ण की बाबी मंदोदरी के रही है, तो इसलिए थे उदार लायोड़ी भाषा ने, पढ़ने पेट भरा मत करो, बुद्धि ज्ञान उसमें ज्ञान भरा है संस्कृति के अंदर में। एनी हाउ सॉरी दैट आई हैव टू स्पीक बिटवीन in Hindi and Sanskrit, I don't know, so I have to speak a little bit English because all of you, but I'm telling these Indians, they should learn their mother tongue and then after they should learn English. They don't know English and they forgot the Hindi. I asked someone address, I have very wish the direction is going there, oh, where is that place? So say state. State
is not a path, direction, straight. But वो straight तो आता नहीं है. और महाराज जी वो क्या कहते योगा के अंदर हमें, तो हम कहते हैं अच्छा भाई, अरे भाई गाड़ी चलाओ, कॉन्सेंट्रेशन करो. तो वो क्या कौन सा स्टेशन? अरे बाप जी कौन सा स्टेशन चल रहे हो नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ने कौन सा स्टेशन, आधारी अंग्रेजी ने आधारी हिंदी. सही बात है कि नहीं? इसलिए दैट्स व्हाई गुरु पूर्णिमा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन. सनातन वैल्यूज ऑफ द ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन क्वालिटीज, ह्यूमन एबिलिटीज, दिस इज अ गुरु पूर्णिमा एंड देन इज अ वर्शिप्ड ऑफ दैट डिवाइन हु गेव यू द नॉलेज. देन इज अ बर्थडे ऑफ भगवान वेद व्यास एंड एवरी डिसाइपल एडोर्स रिमेंबर्स टू कीप दिस लिविंग कल्चर. सो गुरु पूर्णिमा इज अ फेस्टिवल ऑफ द कल्चर टू प्रोटेक्ट द कल्चर इज कॉल्ड लिविंग कल्चर. सनातन धर्म इज ए लिविंग धर्म. सनातन धर्म इज ए लिविंग धर्म. व्हाट डज इट मीन? व्हाट मीन्स द लिविंग धर्म? वन मदर गिव्स ए बर्थ टू ए चाइल्ड. इट इज द धर्म ऑफ द मदर टू गिव ए बर्थ टू द चाइल्ड. इज हर धर्म, वो सनातन धर्म है. ए वन ट्री गिव्स यू फ्रूट. इट इज द धर्म ऑफ द फ्रूट ट्री टू गिव द फ्रूट. एक माँ बच्चे को जन्म देती है, बच्ची को जन्म देती है, वो उनका धर्म जो है वो सनातन धर्म है. और इस युग के अंदर, इस आधुनिक युग में गुरु के बिना कोई काम चल ही नहीं सकता है. कौन सा गुरु? थारा मास्टर स्कूल में. स्कूल के मास्टर आपके गुरु है. इसलिए और सभी सिस्टम विल स्टॉप ब्लॉक, बट द सनातन धर्म गुरु एंड डिसाइपल विल एवर एंड एवर विल लास्ट. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इटर्नल रिलीजन ऑफ सनातन. द रिलेशन ऑफ द मदर चाइल्ड हस्बैंड वाइफ नेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देयरफॉर द गुरु पूर्णिमा हैज ए great meanings than other any festivals. हम मनाते हैं भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी. वो एक ही जन्माष्टमी मन रही है, लेकिन गुरु पूर्णिमा जो है अरबों खरब महर्षि ऋषि मुनियों की और आने वाले संतों की वो बनती रहेगी. वो ही इसीलिए that is the greatest festival. That's called living festival. Sorry. Guru Purnima is living festival. Jinda. Aur sab sampradaya chali jayegi, lekin ye sanatan sanskriti kabhi nahi mitegi, kyunki ye shishya aur guru ka nata hai. Aap sabhi ko bahut bahut sadhuvad. आप आए, यू कैम ऑल वेलकम. नाउ इज द टाइम फॉर प्रसाद, देन आफ्टर विल बी भजन, एंड भजन के बाद में आनंद, और आनंद के बाद में जागृत. तो जागृत, सुसुप्त और स्वप्न तीनों ही एक ही पंडाल के नीचे दर्शन होगा.
कोई तो करेगा ऐसा, दूसरा कहेगा हाँ है। तो खाना पीना ने सोना और गाना सब यही पे होना के बाबू जी कमरों के कमरा तो गणे जा हुई जा, कमरा की कोई कमी नहीं है, हमें तो कमरा खूब है। पर माँ कोई नाग देवता बैठा वे तो आ बारिश में खेत पानी भरियोड़ो हैंग है, जको ध्यान राख जो भाई सरप अरप आ जाता है, इसलिए इधर उधर जाते हो। और दूसरे ये बार बार हमेशा कहते हैं कि लोग चले जाते हैं लघु शंका करने के लिए, पेशाब करने के लिए इधर उधर, ये पानी हमारे तालाब में जाता है, पानी पीने को जाता है, बाथरूम बने हुए हैं उधर ही जाना। अब इस बार पुलिस वाले कह रहे हैं कि अगर आप को बाहर इधर उधर निपटते देखते हुआ तो पुलिस वाला फोटो लेगा। कहला कोई को नहीं, पुलिस वालों को मैंने ऐसा फोटो दे रखा, कैमरा दे रखा है, दूर से वो देख करके क्लिक करेंगे और कहेंगे बाप जी ओ अटे बैठो तो। इसलिए हमें उसी जगह जाना है जहां सुविधा दी हुई है, भजन होंगे रात्रि भर आप भजन गाना, सुबह प्रोग्राम होगा 8 बजे, 8:30 बजे गुरु पूजा होगी गादी की, और उसके बाद में यहां सभी सज्जन आएंगे दर्शन करेंगे तो कार्यक्रम चलता रहेगा। अब भोजन होगा तो आप सभी प्रसाद पाए, और आफ्टर वन आवर ईटिंग इट विल बी अगेन द सत्संग। विश यू ऑल द बेस्ट ऑल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स राउंड द वर्ल्ड, इफ यू वॉन्ट टू लिसन द भजन्स देन इट विल बी webcast and bhajans whenever you like, you can put on your television and you can see or hear the bhajan.

0: दीपनारायण भगवान की जय। श्री श्री शिवनाथ परम स्वामी गुरुदेव की जय।
1: Now there is coming beautiful bhajan written from Paramahamswami Madhavanandaji, Holy Guruji.
2: És most egy gyönyörű bhajan következik, amit Holy Guruji írt.
1: Omkar Rachana Sarire.
2: Ez a címe, Omkar Rachana Sarire.
1: And

दीप तालियां भगवान की जय। श्री विश्व गंधर्व परमस्वामी अश्विन गुरुदेव की जय। जुग जुग जीवो महेश्वर नंद जी।

0: estarem भगवान की जय। श्री विष्णु गणेश परम स्वामी अश्वनी गुरुदेव की जय।
1: Yeah, repeat now, no? Repeat.